स्वागत है शो गुरजीत दा दे विच ते गल्लां बातां करांगे जिंदगी दी कहानी दी। कहिंदे ने बहुत सारियां कहानियां हुंदियां ने तुहाडियां मेरियां सारियां दियां, ओह सारियां गल्लां बातां आपां रेडियो चन परदेसी दे माध्यम राहीं सांझियां करना। ते बहुत सारे सज्जणां ने अज गीतां दी लंबी लिस्ट भेज दित्ती, आपां गीतां नूं कर रहे हां डाउनलोड। ते सुनदे रहो रेडियो चन परदेसी, ते करदे फिर तुहाडी साडी ते अपणियां दी सारियां दी गल्लबात।

जी बड़ा प्यारा खूबसूरत गीत साझा किया तह दिलो धन्यवाद। लो जी चलते हैं अगले गीत वाल। अगला गीत रामजीत सिंह कंगूड़ा साहब ऐसा फनकार कड के लिया ने बड़िया पुरानिया यादा तरोताजिया हो जाएगी मेरिया तो हो ही जानिया हो गई गाने डाउनलोड करते सारी ते तुसी दसो इस फनकार का नाम देखो दे केड़े केड़े सज्जना इस फनकार का नाम याद है। सुनते रहो रेडियो चन्न परदेसी तुसी बने हुए शो गुरजीत दा दे विच।

दोस्तों सत श्री अकाल, मैं थोड़ा अपना इंद्रजीत निकू, तुसी सुन रहे हो चन परदेसी रेडियो, जिहड़ा शिकागो दा फर्स्ट रेडियो, जिहड़ा सत्ते दिन तुहाडी सेवा करदा अपने प्यारे प्यारे गीतां राहीं। इहदी सारी टीम नूं इंद्रजीत निकू वल्लों कोटन कोट धन्नवाद, इहनां दा शुक्रिया अदा इहनां दा, जिहड़े साडे पंजाबी सभ्याचार दी, पंजाबीयत दी इन्नी बाखूबी सेवा कर रहे ने।

दुनिया के हर कोने बैठे सारे ही सत्कारयोग पंजाबियों नू मेरे वालों जनी की तुहाडे अपने दोस्त ते होस्ट गुरजीत सिंह वालों एक बार फिर तो तुहाडा सारयां दा दिल दी गहराई तो रेडियो चन्न परदेसी दे वेड़े दे विच मैं स्वागत करता जी जिया आखदा ते नाल नाल सारयां नू प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब ते नमस्कार आखदा ते हाजिर आ जी तुहाडा अपना प्रोग्राम लैके

0: मट्टू साहब ने तो वाकई कहते ने प्रोग्राम नू चार चैनल लगा देते थे गुरु साहब की उस्तत कर दी थी। एक बार फिर तो आप रेडियो चैनल परदेसी दे सारे स्रोतियां दे माध्यम राही आप सारे नू एक बार दूसरे पातशाह श्री गुरु अंगद देव जी की गुरता गद्दी दे वास्ते लख लख मुबारक देने हते। जिथे गुरु साहब दी मुबारक उथे नाल नाल दादा दादी दे दिहाड़े दी भी बहुत सारिया मुबारक। कहिंदे ने दादा दादी दे उत्ते थोड़ी जी गल कर ली अज भावें गाने थोड़े थोड़े चलावांगे जां फिर एक दो किसे दा रह भी गया गुस्सा ना करियो। कहिंदे ने वाल विंगा नहीं होण दिंदा भीड़ च खलोते दा, बड़ा गूढ़ा रिश्ता हुंदा दादे ते पोते दा। वाल विंगा नहीं होण दिंदा भीड़ च खलोते दा, बड़ा गूढ़ा रिश्ता हुंदा दादे पोते दा। वाकई कहिंदे ने दादे पोते दा बड़ा गूढ़ा रिश्ता हुंदा। ते कहिंदे दुनिया ते जेकर आपां दुनिया दे विच जेकर सारे बच्चियां दी गल्लबात करिए ना, आपां भी आप भी सोच के देखो, अपने बारे भी सोच के देखो, जां अपने बच्चियां दे बारे सोच के देखो, तो जिहड़े दुनिया दे विच बच्चे जिन्ने भी हुंदे ने उह सब तों वध अपने प्यो तों वध प्यार उह दादा दादी जां नाना नानी नूं करदे हुंदे ने, क्योंकि उह सब तों वध समां ही उहनां दे नाल वध तों वध बिताउंदे ने। ते आपां तां आप मैनूं लगदा इह गल्लां करदे करदे मैनूं तां अपने दादा जी ते अपने नाना जी, इह दादा मेरे जानी कि सरदार गुरमुख सिंह जी ते नाना जी उन्हां नूं हर वक्त मैं सरदार गुरदेव सिंह जी उन्हां नूं हर वक्त चेते करते रहने। कहिंदे ने मिले भागां नाल प्यार यारो दादी मां दा, बड़ा गुरा रिश्ता हुंदा है इस निग्गी छां दा। ते बिल्कुल कहिंदे उस दादा दादी नूं याद करदे हो। सब तों पहला आपां इस प्रोग्राम दे विच दादा दादी दी गल्लबात करदे हो, उस गीत नूं आपां उन्हां सारिआं नूं इक डेडिकेट करदे हां, सारिआं दे दादा दादी दीआं बहुत सारिआं मुबारकां। ते नाल नाल इस वक्त बहुत छोटे छोटे बच्चे जां बड़े प्यार दे परिवार जदों इकट्ठा होकर सुनदा ना रेडियो चैनल परदेसी दे, फिर दिल गार्डन गार्डन हो जांदा है। जसी भैन जी दे पूरे परिवार वल्लों जिहड़े कि जपवीर सिंह, महताब सिंह ते अशमीत कौर ते कनिका कौर ते वल्लों अज सारे परिवार दे वल्लों सारिआं नूं बहुत सारिआं मुबारकां। ते नाल नाल सारे प्रोग्राम दा आनंद लैंदे ने, दिल गार्डन गार्डन करदे ने। तो चलदा जी फिर दादा दादी के की कहिंदे ने, जां फिर असीं बचपन दे विच अपनी दादी नूं किहड़ा गाणा सुणांदे हुंदे सी, सुणदे रहो रेडियो चैनल परदेसी। ते जेकर तुसी भी यह गाना अपनी दादी वास्ते गाया सी तां मैसेज जरूर करियो।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल।